मुलुक भर का विभिन्न FM रेडियो एक साथ हर एक बिहान 7 बजे देखि 8 बजे सम्म कार्यक्रम ज्योतिष वास्तु पंचांग राशिफल भूत वर्तमान र भविष्य को पूरा जानकारी को लागि ज्योतिषाचार्य पंडित प्रेम प्रसाद सुवेदी को साथ में नेपाल भर एक साथ प्रसारण हुने कार्यक्रम ज्योतिष वास्तु सुन्न नभुल्नुहोला।

0: रेडियो बिहानी 97.6 MHz
1: रेडियो बिहानी समय संकेत यति बेला बिहानको 8 बज्यो।

soy. LG ले ले आयो नया LG Essential Series. अब किफायती मूल्य में refrigerator, washing machine, AC को complete range. 10 वर्ष को warranty सहित 0% no cost EMI. नागरिकता भए पुग्छ. हर एक घर को खुशी घर घर में LG. LG, life's good.

रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज रेडियो बिहानी समय संकेत यति बेला साँझको 5 बज्यो।

0: सामाजिक रूपांतरण का लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।
1: उच्च गति, भरपर्दो कनेक्टिविटी र बलियो नेटवर्क द्वारा संचालित सीमलेस ब्राउजिंग र स्ट्रीमिंग का लागि डिश होम इंटरनेट अत्याधुनिक प्रविधि को नेपालमा पहिलो पटक वर्ल्ड
2: रेडियो बिहानी समय संकेत यति बेला बेलुकीको 8 बज्यो।